0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: दिया।
1: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाए।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक गुड मॉर्निंग 7:07।
2: बॉलीवुड

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: It is 7:25 on the clock and autumn equinox happened at 4:05 a.m. This morning, which means that अच्छे दिन आने वाले हैं। 32 degrees Celsius right now, humidity at 65%, winds blowing at 6 kilometers per hour, highs of 37, lows of 31 degrees Celsius.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 7:41 on this Wednesday ki subah, aur yaad karo ke Altown Square kaisa lagta tha. Yeah, because that's only going to be in your memory. It's all going to change on the 4th of November.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Kal yesterday, 22nd of September, the RTA unveiled ki kaisa lagne wala hai the new design of the iconic roundabout, which is of course the Altown roundabout, jahan par kaam chal raha hai. 500 meter ka ek Sharjah Dubai tunnel is going to be beneath the square, Altown Square ke niche se होते हुए ये 500 मीटर का टनल जाने वाला है. ऑफ कोर्स 20 मिनट्स आप वहाँ पर बिताते थे लोग सुबह भी और शाम को भी भारी ट्रैफिक से, अब मिलेगा आपको छुटकारा. एंड दैट्स कोइंसाइडिंग विद द लॉन्च ऑफ द शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर, वन ऑफ द मोस्ट यू नो अमेजिंग लुक फॉरवर्ड टू इवेंट्स ऑफ द एंटायर कैलेंडर ईयर. या सो SIBF शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर की ओपनिंग एंड द ओपनिंग ऑफ द न्यू दी ब्रांड न्यू Altown Square is going to be on the 4th of November. Something to look forward to. From Cocktail to Jabtalak, coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Big.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड मॉर्निंग, 8:05। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Tbilisi, Georgia from just 2,000 dirhams with flights, hotel and transfers included. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: You know, I'm really surprised with the kind of number of posts that you'll find on social media saying, oh my God, only 100 days to go for 2027.
2: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: गिन के देखो 100 दिन बचे हुए हैं 2026 में. ओ माय गॉड, यार टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता. एकदम आपके साथ जरूर से टाइम. गाइस हैंग ऑन, काम डाउन अ बिट. देखा जाए तो 100 डेज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द ईयर. सो लिटरली दिस इज दैट ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल वाला पानी का ग्लास, आधा खाली या आधा भरा हुआ वाला चक्कर है. ये डिसाइड करता है कि द वे यू काइंड ऑफ सी दिस पर्टिकुलर न्यूज. 1/3 ऑफ द ईयर अभी बाकी है एंड वी आर लाइक सेइंग कि नहीं नहीं बस ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आ ही गया 20, मतलब यू समझो कि बस समझो हो ही गया. पीछे हट टू ऑल दोस पीपल हु आर एक्चुअली पोस्टिंग दिस ऑन सोशल मीडिया. This is the Big Breakfast with me, Sid. Lots of contests coming away, some brand new ones. This is Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: सम एक्सपेरिमेंट्स जो कि बॉलीवुड में होते हैं दैट कैन गो हॉरिबली हॉरिबली रॉन्ग और बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंट एवर.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: वन ऑफ देम इज मनोज बाजपेयी एज महात्मा गांधी. आपने सुना कि मनोज बाजपेयी इज एक्चुअली गोइंग टू बी प्लेइंग महात्मा गांधी एंड द फर्स्ट लुक फ्रॉम सुधीर मिश्रा'स फिल्म हैज सर्फेस्ड. आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली डिसाइड कि मुझे ये अच्छा लग रहा है मुझे बुरा लग रहा है. लाइक आई सेड, इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आई कैन नॉट वेट फॉर बिकॉज लव इट और हेट इट यू कांट इग्नोर इट. या तो ये दुनिया का सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट होगा, माइंड ब्लोइंग होगा, या फिर माइंड नमिंगली फनी होने वाला है. बट या आई मीन उनका फर्स्ट लुक एज द फ्रीडम मूवमेंट लीडर्स.

0: ये दुनिया का सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट होगा, माइंड ब्लोइंग होगा या फिर माइंड नमिंगली फनी होने वाला है. बट या आई मीन उनका फर्स्ट लुक एज द फ्रीडम मूवमेंट लीडर सर्फेस्ड ऑनलाइन एंड ही इज लॉस्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेट फॉर दिस वेरी ऑफकोर्स चैलेंजिंग रोल. एंड इस फिल्म के प्रोड्यूसर है अनुभव सिन्हा एंड ही इज हाईलाइटेड हिज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स करंटली बींग शॉट इन लखनऊ. लखनऊ में अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं तो उनको बोलिए यार, जस्ट बी ऑन द लुकआउट, यू माइट फाइंड दिस यू नो मनोज बाजपेयी ड्रेस्ड अप एज गांधी आउट देयर ऑन द स्ट्रीट्स. एंड एक 21 डे का लेसन नोन चैप्टर है इन महात्मा गांधीज लाइफ अराउंड इंडियाज इंडिपेंडेंस. दैट्स वॉट दिस फिल्म इज अबाउट. एंड इट्स ऑफकोर्स अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्यूरियोसिटी है इस प्रोजेक्ट को लेकर, पर्टिकुलरली क्योंकि ये मनोज बाजपेयी का पहली बार ऐसा होगा दे इज गोन बी प्लेइंग यू नो महात्मा गांधी. एंड ऑफकोर्स मतलब अभी तक जितने भी सक्सेसफुल यू नो गांधीज ऑन स्क्रीन हुए हैं दे आर लेसर नोन और अननोन और फर्स्ट टाइम यू नो यू सीन देम ऑन स्क्रीन. वेन एवर समबडी नोन लाइक अ मनोज बाजपेयी और इवन अ नसीरुद्दीन शाह हैज डिसाइडेड टू डू इट, इट्स नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल. टॉकिंग अबाउट सक्सेस, यू नो वॉट दिस गाय इज फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज, मनी फॉलोज माई ब्रदर. आई कांट डू इट हाफ एज वेल एज दिस गाय.
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है, सुनो. नाम या दाम?
2: नाम.
3: मनी फॉलोज माई ब्रदर.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक,
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: Bollywood.

0: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
1: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
0: अलराज कहाँ है अलराज?
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
2: अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
0: चलो चले अलराज।
3: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, four exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. The Big Breakfast. Brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
5: Get ready to laugh till your stomach hurts. The best comedy is hitting the stage and these two old legends are about to drag each other down live. Purane Chawal, starring Kumud Mishra and Shubhra Jyoti Bharat, directed by Sumit Vyas. Catch this seasoned comedy on 26th and 27th September at The Junction. D for Drama. Book your tickets on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
6: This Navratri, experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids Aras. With Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made last by Big 106.2.
4: The Big Mix. Miss kiya gaya?
7: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
8: हाय अखिल।
9: हाय।
8: मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी साइड पर है, आप जर्मनी चल सकते हो हमारे साथ।
9: Maybe, yeah.
8: So what popular German sweet treat is a soft fried dough pastry which is very similar to a jelly donut? Option A, Berliner. B, yeah. Churros. C, a macaroon.
9: First one.
8: ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट्स द बर्लिनर। लेकिन आपने कभी खाया है ये?
9: नहीं खाया, मेरे को खाने के अभी वहाँ पे जाके
8: नाम लेते ही जो क्रेविंग शुरू होती है खाने की कि अभी खिला दो। आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है वैसे?
9: नॉर्मली आई लाइक आइसक्रीम, यूजुअली आई लाइक द गुलाब जामुन।
8: गुलाब जामुन प्लस आइसक्रीम का कॉम्बो कभी ट्राई किया है?
9: ट्राई किया था।
8: अच्छा बात है ना, इसे जर्मनी में जाके ये सब ट्राई करना, फिर पता लगता है कि हम घूमने आए हैं। Congratulations, Akhil, आपका नाम रजिस्टर हो चुका है टू बिग चेक इन टू जर्मनी।
4: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
10: Hey, जल्दी हटा, तेरा खड़ा रहा, चल हटा।
11: हाँ,
10: अरे जल्दी हटा, सुन
11: ना। हाँ,
4: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
12: गुड मॉर्निंग, इट इज 9:28 ऑन द क्लॉक। लेट्स टेक अ लुक सबसे पहले एट शेख जायद रोड पे। कुछ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक सुबह से था, अभी भी है, लेकिन इट्स मच मच बेटर द सिचुएशन आउट देयर। जीएलटी से लेकर मीडिया सिटी के बीच में यू विल फाइंड अ बिट ऑफ नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक अभी भी, एंड देन अ बिट गोइंग टुवर्ड्स उमसेकिन स्ट्रीट फ्रॉम हेक्सा स्ट्रीट वाला जो एरिया है, अलसोपू से उमसेकिन की तरफ ज्यादा हुआ ट्रैफिक आपको मिलने वाला है नॉर्थ बाउंड ऑन शेख जायद रोड। चलते हैं 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, बोथ दीज हॉटस्पॉट्स पे एक्सपेक्टेड जगहों पर आपको ट्रैफिक मिलेगा 7 से 8 मिनट का। दिन दिस बेरूत स्ट्रीट हेडिंग साउथ आफ्टर मदीना मॉल, इंडस्ट्रियल एरिया 6 इन चार्ज, ऑल्सो S112 इज क्वाइट बिजी, स्पेशली यूनिवर्सिटी सिटी वाला जो एरिया है यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। The good news is the 611 is completely free of any congestion and 44 पर भी हल्का बुल्का ही ट्रैफिक है and this is going towards Business Bay from D3.
3: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
4: Big 106.2.
13: सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।
14: गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी।
4: Big

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: गुड मॉर्निंग 10:09।
1: बॉलीवुड

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: मोरनी तो बागा में नाचे, लेकिन सब कोई नाचने वाला है मैदान के अंदर, बिकॉज नवरात्रि इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड दिस नवरात्रि एक्सपीरियंस द फेस्टिव सूक एग्जीबिशन. ये 26th ऑफ सितंबर को होने वाला है, सुबह के 10 से लेकर रात के 10 एट अलमास कॉन्फ्रेंस सेंटर. इट्स राइट आउटसाइड JLT मेट्रो स्टेशन एंड यू कैन शॉप फ्रॉम 45 से भी ज्यादा एग्जीबिटर्स फीचरिंग फेस्टिव फैशन, साड़ीज, ज्वेलरी, होम डेकोर, फूड एंड सो मच मोर. किड्स एक्टिविटीज, एक्साइटिंग कॉम्पिटिशंस, UAE's गॉट टैलेंट सीजन 8 का ग्रैंड फिनाले, प्लस चांसेस टू विन स्टेकेशंस एंड डिनर वाउचर्स. एंट्री एंड पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री. इज ब्रॉट टू यू बाय किड्स आर अस विद डिवेलिशियस ब्यूटी सलून, ज्वेलरी पार्टनर बियानी ज्वेल्स, इवेंट मेड लार्ज बाय बिग 106.2.
0: बिग 106.2. The beat of Bollywood.
2: Two splendid years of insurance market metro station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurancemarket.ae.
3: Many chances with big tickets.
4: 20 million dirham grand prize. 5 consolation prizes up to 1 million dirhams.
3: Plus big spin and weekly e-throws.
4: Buy now at bigticket.ae.
5: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
0: Listen to her every day.
6: Mugembo! Khush hua!
7: Three things that are white in color and you can eat.
8: Kheer, paneer, doodh.
7: Very nice. मतलब किचन में जाते हो आप, बीवी की हेल्प कराते हो आप?
8: हाँ हाँ, बनाता हूँ, जब जब बनाता हूँ मैं.
7: हाँ, बना तो नहीं रहे हो ना मुझे. फिलहाल तीन ऐसी आपकी आदतें जो वाइफ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं.
8: Watching cricket over the phone every time.
7: Oye, time khatam. Three romantic nicknames jo aapne apni darling wife ko diye hain.
8: Dumbo, Janu, Shona.
7: Oh, so cute. तो करते हो क्या, मेरे शोना ने खाना खाया, मेरा शोना गुस्सा है?
8: नहीं नहीं, मैं ज्यादातर डम्बो बुलाता हूँ.
7: वेरी नाइस. वो आपको क्या बुलाती
8: है? है नहीं, वो नाम से, वो भी ऐसे कुछ डफर बुलाती.
7: वेरी क्यूट. आई लव दीज निकनेम्स. तीन झूठ जो आप बीवी से बोलते हो दोस्तों से मिलने के लिए.
8: आज हम लोग लंच पे जा रहे हैं.
7: नहीं नहीं नहीं नहीं, टाइम खत्म हो गया. नॉट बैड, बट
0: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक. 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
1: It is 10:24 on the clock, and let's take a look sabse pehle at the capital, Abu Dhabi. Yahan par aapko wahi usual halka bulka traffic milne wala hai, and this is northbound going towards Banias E11 par at Mafraq Industrial. इसके अलावा चलते हैं दुबई शारजा की ओर. यूल फाइंड कंजेशन अचानक से काफी बढ़ गया है 44 पर अलखेल रोड, एंड दिस इज रसलखोर वाइल्ड लाइफ से लेकर ऑल द वे टू ऑलमोस्ट बिजनेस बे तक आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक मिलेगा. यहाँ पर 8 से 10 मिनट एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे आपको. देन देयर इज 311 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. यूजुअल हॉटस्पॉट्स पर यूजुअल अमाउंट ऑफ ट्रैफिक. अ बिट ऑफ कंजेशन बेरूत स्ट्रीट पर हेडिंग साउथ आफ्टर मदीना मॉल, एंड स्टिल अ बिट ऑफ कंजेशन हेडिंग नॉर्थ ऑन शेख जायद रोड, एंड दिस इज अलकूस से बिजनेस बे के बीच में.
9: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
0: Big 106.2.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड, द बिग मिक्स, वीकडेज 1 to 5 PM, ओनली ऑन बिग 106.2, ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae. Big 106.2. That's my song.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Mix, miss kiya gaya?
1: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
2: हाय अखिल।
3: हाय।
2: मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी साइड पर है, आप जर्मनी चल सकते हो हमारे साथ।
3: Maybe, yeah.
2: So what popular German sweet treat is a soft fried dough pastry, which is very similar to a jelly donut? Option A, Berliner. B,
3: yeah.
2: Churros. C, a macaroon.
3: First one.
2: Option A is the right answer. It's the Berliner. लेकिन आपने कभी खाया है ये?
3: नहीं खाया मेरे को, खाने के अभी वहाँ पे जाके
2: नाम लेते ही जो क्रेविंग शुरू होती है खाने की कि अभी खिला दो। आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है वैसे?
3: नॉर्मली आई लाइक आइसक्रीम, यूजुअली आई लाइक द गुलाब जामुन।
2: गुलाब जामुन प्लस आइसक्रीम का कॉम्बो कभी ट्राई किया है?
3: ट्राई किया था।
2: अच्छा बात है ना, इसे जर्मनी में जाके ये सब ट्राई करना, फिर पता लगता है कि हम घूमने आए हैं। Congratulations, Akhil. Your name is registered to Big Check-In to Germany.
0: Cheer your midday mood Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 1:06।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: बहुत सारे लोग अंडर द वेदर चल रहे हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। फिलहाल टेम्परेचर इज 37 डिग्रीज आउट देयर विद 41% ह्यूमिडिटी, एंड कहा गया था कि आज 23 सितंबर से वेदर काफी चेंज हो जाएगा। आर यू फीलिंग एनीथिंग? कॉल करो मुझे 800-1062 पर।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big.

0: A staycation from just 250 dirhams? Yes, really! I found the deal! Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड यू नो, एक फोकलोर माइथोलॉजिकल सिनेमा ऐसा होता है कि जब आप बैठो अपनी सीट पर ना, आप भूल जाओ कि आपकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है. दैट्स एक्चुअली व्हाट आई कॉल अ ग्रेट सिनेमा. दिस वीकेंड रिलीज हो रही है द वी वन, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फोकलोर जो छठ पूजा पर बेस्ड है, स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया द मेन लीड्स. लेकिन उसके साथ साथ बहुत और बढ़िया कास्टिंग है और ट्रेलर से ही आप उस इरा में पहुंच जाते हो.
3: अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब एक नंबर की बकवास है.
4: अच्छा सुनो, छठ की छुट्टी मिली क्या?
5: छठ की छुट्टी नहीं, बॉस ने बोला है उन 5 दिन ना बहुत काम है.
3: जैसी देवांचल की आखिरी ट्रेन छुटेगी मैं उससे बोलूंगा कि मुझे छुट्टी मिल गई और फिर गोवा.
5: देखा कि तुम
3: यहाँ चोट लगती है और मैं अपना होश खो बैठता हूँ. कुछ अजीब सा महसूस होता है.
5: ओ मेरे करण अर्जुन, मुझे यहाँ से 200 मीटर आगे का नहीं दिख रहा और तू पास्ट में घूम क्या रहा है?
3: शायद देवी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती.
6: जब भी इन मायावी शक्तियों का प्रकोप मानवता के लिए खतरा बनेगा तब तब तुम्हें आना होगा. किसी भी युग में तुम्हें आना होगा वीर.
2: Honestly, the trailer looks really, really, really promising. Let's see 25th of September को जो ये release होने वाली है cinemas में, the V1. It has got Anoop Soni, Sunil Grover and Manish Paul as well. The great actors. And the trailer में भी काफी horror था, comedy थी, साथ में action भी था. But let's see this weekend how it goes with V1. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, और शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lalsa, 26th September at the Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
4: Listen to her every day.
5: Mugembo! खुश हुआ
6: जतिन, जर्मनी की मैं बात करूं, इट्स अ प्लेस व्हिच इज नोन फॉर हाईवेज, फॉर सम ग्रेट कार्स एंड ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर एट द ऑक्टोबर फेस्ट। तो इन तीनों में से आपका मोटिव क्या है, जर्मनी जाके आप ज्यादा क्या करना चाहते हैं?
7: एक्चुअली मेरा मोटिव तो अक्टूबर फेस्ट एंजॉय करना ही है।
6: मैं समझ ही गई थी, आप हो देवदास, हमको किसी के गम ने मारा। आपको संभाल के रखना पड़ेगा, अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो कहीं गुम ना हो जाओ। बहुत बढ़िया, गिविंग यू चांस शॉर्टलिस्ट होने का। आई विल सी आपकी जीके जर्मन नॉलेज कैसी है। व्हिच मैसिव गॉथिक कैथेड्रल टुक ओवर 600 इयर्स टू कंप्लीट एंड इज वन ऑफ जर्मनीज मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस और साइट्स? ऑप्शन है The Cologne Cathedral, या फिर ऑप्शन बी Notre Dame, ऑप्शन सी सेंट पीटर्स बेसिलिका। दे दिया चैट जीपीटी ने जवाब, पर वो 100% करेक्ट नहीं होता है।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
8: शेखजायद रोड अराउंड अलबरशान जुमेरा विलेज सर्कल पर आपको पैची ट्रैफिक मिल जाएगा। वाइली 311 थ्रू दुबई स्पोर्ट्स सिटी टुवर्ड्स अलफुरजान एंड अरेबियन रांचेस पर भी आपको कंजेशन मिलेगा। ट्रैफिक इज बिल्डिंग अप अराउंड अल गुरूद, दुबई फेस्टिवल सिटी एंड रासल खोर। कहीं और फंसे हो लेट मी नो, कॉल करके 800-1062 पर।
9: Now lease a brand new SUV from Jetwort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2.
10: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Now lease a brand new SUV from Jetort and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ और मेरे साथ एक और इंसान है. Hi.
3: Hello.
2: Yes. क्या नाम बताया आपने अपना?
3: फाजिल मोहम्मद.
2: फाजिल, आप, मैं वेदर की बात कर रही थी. आपको फील हो रहा है कि वेदर चेंज हुआ है थोड़ा सा कि नहीं हुआ है?
3: एक्चुअली मेरे ख्याल से अभी तक ये वेदर चेंज ही नहीं हुआ है.
2: नहीं हुआ है
3: ऐसा कर ले वैसा भी आज. एक्चुअली मैं भी एक आउटडोर सेल्स में हूँ, तो अभी तक मैं आज DAC गया था, तो अभी तक वेदर चेंज नहीं हुआ है.
2: क्या लगता है कब तक होगा? आप कब से हो यहाँ पे UAE में?
3: मेरा एक्चुअली अभी 4 इयर्स हो गया UAE में.
2: तो आप बेटर बता सकते हो. एक्चुअली मेरा पहला साल है यहाँ पर. मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी हो जाएगा ठीक.
3: ये एक्चुअली होने वाला था, लेकिन क्या बोल के मालूम नहीं, अभी तक नहीं हुआ है. जैसा कल था वैसा भी आज है. देखना है बस ये मंथ एंड तक अगर हो गया तो बहुत अच्छा है.
2: मुझे लग रहा
3: है तो हम लोगों को बहुत
2: ये तो है. मुझे लग रहा है हाथ ही निकल गया, बस पूछ रह गई है.
3: बस इंशाल्लाह हो जाए, बस होना है जल्दी से जल्दी. सभी को अच्छा रहेगा, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सब.
2: Absolutely.
3: मतलब हमें तो बाद में एक गाड़ी है उसमें भी ऐसी लगता है. मतलब ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना, इनका बहुत मुश्किल है. कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और रोड साइड में जो क्लीनिंग पूरा करते हैं. बस दुआ है जल्दी से जल्दी वेदर ठीक हो जाए.
2: वैसे भी बहुत लोग अंडर द वेदर चल रहे हैं और अपना ख्याल रखते रहो यार. वेदर तो हो जाएगा, एक हफ्ता और सही हम निकाल लेंगे. व्हाट डू यू थिंक, जो आज से वेदर चेंज होने वाला था, आपको लग रहा है 19-20 का फर्क लग रहा है? तो बताओ मुझे कॉल करके 800-1062 पर.

0: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
1: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
2: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: जसलीन रॉयल का ट्रैक सॉन्ग का नाम था नच देने सारे, लेकिन जो भी ये लोग वायरल से गुजर रहे हैं ना वो नहीं नाच पाते हैं यार, एनर्जी नहीं बचती है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड whenever you're under the weather, वायरल होता है, ठीक नहीं होते हो, मन करता है कि बस मैं उस बिस्तर में बैठी रहूँ, बाहर जाने का तो मन करता ही नहीं है। सो इमेजिन नाउ हैविंग अ सूपी नूडल का बोल इन योर हैंड, उस बिस्तर पे बैठे बैठे आप अपनी स्क्रीन टाइम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो वाइल वॉचिंग दिस वेब सीरीज जो रिलीज हो रही है कल 24th of September को ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है शक Trust No One. It's going to be the Hindi mystery thriller. 6-7 episode होंगे तो लगा लो यार 6-7 घंटे का binge watch तो लगा रहेगा आपका weekend पे. It stars परिणीति चोपड़ा in the main leads. और हम इतना excited होते हैं यार weekend के लिए, पर weekend हमें ये कब बोलेगा? कह भी दो यार अब. You are my Sonia track coming up your way after this one. Until then, keep it locked to Big 106.2.

0: President Trump for the first time since his forces deposed her former boss, Nicolas Maduro, in January. They held talks on the sidelines of the UN summit in New York, close to where Mr. Maduro is being held. And a summit to counter cyber fraud is being hosted by Cambodia, where the Prime Minister has insisted his country will no longer be a haven for transnational scam syndicates. Representatives from more than a dozen countries are attending.
1: Fan Network News from the BBC. Great coverage, vibrant colour, natural finish, all in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour, made in Italy. Big 106.2.
2: चुम्पी सॉरी तानिया, हाथ में पॉम पॉम लेके लड़कों के लिए चिल्लाना मेरा स्टाइल नहीं है. वो मेरे लिए चिल्लाए, सीटी बजाए, दैट्स नॉट माय थिंग.
1: She's bubbly, bringing fresh energy and a whole lot of flavor. The Big Mix with Avni on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. इट्स पास टू एंड मंडे पार्ट थ्री. इस वेंसडे को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके लिए आ चुका है बिग ट्रैक इन टू जर्मनी. आपको करना क्या है, 0543091062 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है बिग चेक इन स्पेस योर नेम. नंबर रिपीट कर देती हूँ, 0543091062. लेट्स सी रैंडमाइजर आज किसका नाम पिक करता है. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 2:05।
2: Bollywood.

0: Flicks. I found unbeatable holiday deals, staycations, visas, and much more. Your next escape could be closer than you think. Visit holidaymarket.ae.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड दिस इज योर चांस टू गो टू दिस ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप बिग चेक इन टू जर्मनी. आपको करना क्या है, मैसेज करना है इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062. बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजना इस व्हाट्सएप नंबर पर. खेलूंगी मैं एक आपके साथ जीके का सवाल. इट्स नॉट द जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज. लेट्स सी आप ये जीत पाते हो या नहीं जीत पाते हो. बट एनी विच वेज आप अपना नाम तो रजिस्टर कर सकते हो यार. 0543091062. Let's see, आज randomizer किसका नाम पिक करता है, किसको कॉल जाता है, and who's one step closer to the big check-in to Germany.
1: Participate in the big check-in contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Cora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है पहचान की जरूरत नहीं है।
3: Get ready to laugh till your stomach hurts. The best comedy is hitting the stage and these two old legends are about to drag each other down live. Purane Chawal, starring Kumud Mishra and Shubhrajyoti Bharat, directed by Sumit Vyas. Catch this seasoned comedy on 26th and 27th September at The Junction. D for Drama. Book your tickets on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
4: In the morning, the Big Breakfast with Sid. Weekdays 7 a.m. to 11 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Papa John's and Jetour UAE, part of Elite Group Holding.
5: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
6: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
4: Big Weather Update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
7: आपको भी लगा था ना कि यार 23 सितंबर है, वेदर चेंज होने का ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी तो बर्फ पड़ जाएगी। नहीं, 19-20 का फर्क है फिलहाल कल और आज में। 37 डिग्रीज आउट देयर विद 43% ह्यूमिडिटी।
4: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Got a song in your head right now? Just WhatsApp it and we'll play it for you on Big Unlimited. Whether it's your favorite track, a shout out or a message for someone special, send your name, space, your song name and your message to 0543091062. Big Unlimited, your request show from 11 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday, only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
8: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरज़ू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
4: The Big Mix with Avni, only on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड आज मैंने कॉल किया है शिरीष को. हाय शिरीष.
3: हाय.
2: ओके, आप क्या करते हो?
3: मैं एक स्टार्टअप में इंजीनियर की पोजीशन पर काम कर रहा हूँ अभी.
2: पर मैंने आपकी डीपी देखी, आप तो ड्रम्स के साथ बैठे थे.
3: मैं कॉलेज में एक बैंड में ड्रमर था. तो तब पैशन मुझे कॉलेज में अनफॉर्चुनेटली छोड़ना पड़ा. But I still do it at home.
2: And what about vacation? Why do you think you need a vacation?
3: My vacation has been pending for a long time. Like, I've been working in this company. Like, no holiday for like about a year and a half. So I think it'll be like a very deserved vacation if I get it.
2: A year and a half is actually a very long time. Lekin agar aap chale jaate ho, मान लो आपका नाम एकदम ऐसे हो गया, लॉक हो गया, आप जा रहे हो बिग चेक इन टू जर्मनी, फिर आप छुट्टी कैसे लोगे?
3: इट इज अ स्टार्टअप, तो मुझे छुट्टी दे देंगे. लाइक आई एम वेरी क्लोज विद द मैनेजर. आई थिंक ही विल आल्सो बी हैप्पी फॉर मी. लाइक इफ आई टेल हिम दैट आई वांट दिस बिग चेक इन.
2: प्रोस्त होते हैं मैनेजर के साथ दोस्ती में, प्रोस्त होते हैं. मैं मान गई हूँ आपकी बात सुन के. एक सवाल पूछूंगी मैं जीके का. इट्स नॉट द जनरल नॉलेज, इट्स द जर्मन नॉलेज. विच एवरीडे प्रिंटिंग इन्वेंशन was developed in Germany by Jonas Gutenberg around 1440s. Your options are A, the movable type printing press, option B, the ballpoint pen, or option C, the typewriter.
3: Oh, I think it's the movable type printing press.
2: Sure.
3: Yeah, because I think I remember ballpoint pen being like somewhere else. Like, I'm taking a chance between the other two options. I think it should be the movable press. It is a 50-50 for me.
2: But it is correct.
3: Oh, thank you so much.
2: मैनेजर से ज्यादा प्रेशर था यहाँ पर कि नहीं था?
3: था, जरूर था.
2: थैंक यू सो मच शिरीष, आपका नाम जो है रजिस्टर हो चुका है. लेट्स सी आप ड्रॉ में जीतते हो या नहीं जीतते हो. बट यू आर वन स्टेप क्लोजर टू बिग चेक इन टू जर्मनी.
3: लेट्स गो. थैंक यू सो मच.
2: अब मुझे आपकी आवाज से लग रहा है यू एक्चुअली नीड अ वेकेशन.
3: या
2: ओके, थैंक यू सो मच.
3: थैंक यू फॉर हैविंग मी.
2: अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है बिग चेक इन टू जर्मनी में, ऑल यू हैव टू डू इज टाइप बिग चेक इन स्पेस योर नेम और भेजो इस व्हाट्सएप नंबर पर 0543091062.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: बनेगी पलक मुचल का ट्रैक सॉन्ग का नाम था आंखों से तूने। जब तक आंखों तक बात हो ना यार तब तक ही ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद जब रियल टॉक शुरू होती है।
1: The Big Mix with Avni on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ। एंड जेन्युइनली यार जब भी आंखों तक बात होती है तब तक बहुत बढ़िया लगता है, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक चलता रहता है, लेकिन जब भी रियल टॉक शुरू होते हैं ना यार मुझे पता नहीं ये याद आ जाता है। इट्स वेरी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि आप सोलो डेट्स अपने साथ कभी मिस ना करो। एंड फॉर दिस वीकेंड अगर आप प्लान्स देख रहे हो, डी फॉर ड्रामा एट द जंक्शन ब्रिंग्स यू टू अक्लेम्ड हिंदी प्लेज ऑन 26th एंड 27th ऑफ सितंबर, स्टोरीज दैट विल स्टे विद यू लॉन्ग आफ्टर द कर्टन फॉल्स। ये मिस मत करना। पटना का सुपर हीरो एंड पुराने चावल, अपनी टिकट्स आप बुक कर सकते हो ऑन platinumlist.net। प्लस दिस इवेंट इज मेड लार्जर विद बिग 106.2। और अगर आपको टिकट्स जीतनी है, ऑल यू कैन डू इज कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 3:07। Bollywood.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड जब भी आपका ये नाक और गला खराब होता है ना, वायरल होता है, तब सबसे ज्यादा क्रेविंग खाने की होती है. खा सकते नहीं हो स्पाइसी फूड स्पेशली, लेकिन तब भी आपको ब्लैंड खाने पे जीना पड़ता है. बेसन का शीरा पी लो, काढ़े पी लो, एंड यू नो प्रोटीन इंटेक रखो अपना पूरा, न्यूट्रिएंट्स पूरे जाने चाहिए. लेकिन क्रेविंग सबसे ज्यादा जब आप बीमार होते हो ना, तभी होती है. हाँ, तो ऑफकोर्स मुझे भी हो रही है. खाओ पी ऐश करो विद यू. आपको करना है मुझे कॉल इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062 पर. मैं दूंगी आपको दो फूड डिशेस के ऑप्शन. आपको रैपिडली चूज करना है उन दोनों में से कोई भी एक. जो भी सबसे जल्दी करेगा वो जीत सकता है ओपन मूवी टिकट्स आज की. कॉल करना है इस टोल फ्री नंबर पर 800-1062. देख लो यार, बीमार बैठी हूँ लेकिन खाने का, खाने की बातें दिमाग से तब भी नहीं जाती यार मेरे. 800-1062 इज द नंबर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.
2: ചുവപ്പ് നിറത്തിലെ സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഡേഞ്ചർ ആണല്ലോ.

0: Remember the person you thought was a superhero as a kid? For Manoj, it was Pintu Bhaiya, the fearless local hero of early 2000s Patna. A story of childhood, friendship, love and home. Experience Patna ka superhero, starring Ghanshyam Lal Sa, 26th September at The Junction. D for drama. Book your tickets now on Platinum List. Event made large by Big 106.2.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: Listen to her every day.
3: Mugembo! Khush hua!
4: Jatin, Germany ki main baat karu, it's a place which is known for highways, for some great cars, and of course, something which is very popular at the Oktoberfest. So, in teeno mein se, aapka motive kya hai? Germany ja ke aap zyada kya karna chahte hain?
5: एक्चुअली मेरा मोटिव तो अक्टूबर फेस्ट एंजॉय करना ही है।
4: मैं समझ ही गई थी, आप हो देवदास, हमको किसी के गम ने मारा। आपको संभाल के रखना पड़ेगा, अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो कहीं गुम ना हो जाओ। बहुत बढ़िया, गिविंग यू चांस शॉर्टलिस्ट होने का। आई विल सी आपकी जीके जर्मन नॉलेज कैसी है। विच मैसिव गॉथिक कैथेड्रल टुक ओवर 600 इयर्स टू कंप्लीट एंड इज वन ऑफ जर्मनीज मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस और साइट्स। ऑप्शन है The Cologne Cathedral, या फिर ऑप्शन बी Notre Dame, ऑप्शन सी सेंट पीटर्स बेसिलिका। दे दिया चैट जीपीटी ने जवाब, पर वो 100% करेक्ट नहीं होता है।
6: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
7: यार तुमने कभी बताया नहीं कि दुनिया ऐसी भी है।
8: मुझे खुद का पता था यार, मगर हूँ तो हूँ।
6: You are listening to the Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
6: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
11: देख यार, मेरा पहला साल है UAE में और मैं तो खुद वेट कर रही हूँ कि कब विंटर्स आएंगी और कब वेदर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपसे मुझे पता लगा है कि एक हफ्ता अभी और लगेगा। As of now, it's 37 degrees out there with 42% humid levels.
6: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Now lease a brand new SUV from Jetwood and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ एंड मैं खेलने वाली हूँ आपके साथ खाओ पियो ऐश करो. लेट्स सी आज कॉल पे कौन है. हेलो.
3: हेलो.
2: हाय कौन बात कर रहा है.
3: हाय सेजल हियर.
2: सेजल क्या हो गया भाई आप इतने लो क्यों साउंड कर रहे हो. ठीक है तबीयत आपकी. काम पर हो लेकिन ये वाला काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना. इसको कैसे खाने को कैसे मिस कर सकते हैं हम. ओके एक्चुअली मैं अंडर द वेदर चल रही हूँ तो मुझे ये सब क्रेविंग हो रही है. लेट्स सी आप इसमें से क्या चूज करते हो. ओके
3: डन डन.
2: यू हैव टू बी क्विक वेरी वेरी क्विक. इट्स अ रैपिड फायर.
3: चलो डन.
2: व्हाट वुड यू चूज स्पाइसी चाइनीज चाउमीन या फिर शेजवान नूडल्स.
3: चाइनीज
2: चाउमीन. चाइनीज चाउमीन या वेज मंचूरियन.
3: वेज मंचूरियन
2: या चिली पनीर.
3: वेज मंचूरियन
2: या हनी चिली पोटैटो. हनी चिली पोटैटो या स्पाइसी फ्राइड मोमोज.
3: हनी चिली पोटैटो
2: या पेरी पेरी चीज फ्राइज.
3: हनी चिली पोटैटो
2: या पाव भाजी विद एक्स्ट्रा बटर.
3: यार पाव भाजी विद एक्स्ट्रा बटर.
2: That यार got me like कि यार इसको से ऊपर तो मैं नहीं जा सकती हूँ. पाव भाजी को नहीं कर सकते डिस हम. We just can't. You were really really really quick यार. Very nice. मतलब मुझे लगता है कि मुझे मेरे मैच का फूडी मिल गया है.
3: Yes.
2: And आपको मिलती है आज की ओपन मूवी टिकट. Congratulations.
3: Thank you so much.
2: कौन सी मूवी देखोगे. अच्छा
3: मैं अभी आई थिंक मिर्जापुर. आई एम नॉट श्योर येट. आई टोल्ड यू आई एम स्टक विद वर्क एंड ऑल. तभी तो यू नो ऐप खोलने में भी मन नहीं करता है. सही देख नहीं पाएंगे. नाउ आई हैव एन एक्सक्यूज यू नो कि टिकट्स पड़ी है. जस्ट हैव टू मूव माय बॉडी नाउ. सो
2: ओके एंजॉय. थैंक यू
3: सो मच. बाय.
2: इफ यू थिंक यू कैन बी क्विकर देन सेजल ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. अच्छा

0: एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए।
1: द बिग मिक्स विद अवनी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: सॉन्ग का नाम था सोनिए बाय केके. दिस इज एक्चुअली अ लव लेटर फ्रॉम द कार लवर्स टू देयर कार्स.
1: द बिग मिक्स विद अवनी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: बिग 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. एंड लगता है यार जब भी आप लाइफ में इधर उधर भटके हुए होते हो ना, यू जस्ट नीड दैट वन स्मूथ ड्राइव एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग. वक्त थम सकता है, ये मूड भी आपका ऑन हो सकता है. नाउ दैट यू कैन लीज अ ब्रांड न्यू एसयूवी फ्रॉम जिटोर एंड स्कोडा विद प्राइसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1999 दिरहम्स पर मंथ फॉर अ 12 मंथ प्लान. करना कुछ नहीं है, बस विजिट करना है selfdrive.ae पर. TNC अप्लाई एंड नाउ योर राइड्स हैज गॉट स्मूदर. एंड ऑफ कोर्स यार ड्राइव के साथ तो मूड एकदम अच्छा हो ही जाता है. द नेक्स्ट ट्रैक इज फॉर दैट परफेक्ट गेड़ी. तुम हो तो फ्रॉम सैयारा फिल्म कमिंग अप नेक्स्ट. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: तेषां ये राजो
1: छाने नहीं रे बाबा आपते बाबा बाबा बाबूराव गणपतराव आपते बोल
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: 4:06।
1: Bollywood.

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: फ्रॉम द पास्ट 4 आवर्स टेम्परेचर टिका हुआ है 37 डिग्रीज पर ही, तो क्या लगता है कि आज 19-20 का फर्क हुआ है? ऑटम एक्चुअली शुरू हो चुकी है। ह्यूमिडिटी इज एट 47%।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग

0: पकौड़े बनाने तो नहीं आते मुझे, और मैं ना चाय भी बहुत गंदी बनाती हूँ। कौन सी बड़ी बात है, बाकी सब कुछ आता है मुझे। आपके ब्लैक हेड्स भी हटा सकती हूँ मैं। हो गया सॉल्व, आप कंटिन्यू करो।
1: द बिग मिक्स विद अवनि ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Late Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ, एंड मुझसे पूछ लो यार कौन सी मीम ट्रेंड पर है, कौन सा वायरल ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पर, मुझे आज खाने में क्या खाना है, पहनने को पहनना क्या है। लेकिन जब तक मेरी फाइनेंसिस की बात नहीं होती ना, तब तक मैं ठीक हूँ, उसके बाद तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाता है। शीशे में देख के आप इतने एम्बैरेस ना हो, आई हैव गॉट अ तोड़ फॉर यू। व्हाट इज दैट? creditmarket.ae. यू ऑलरेडी नो Alfred फ्रॉम insurancemarket.ae. नाउ Alfred कैन हेल्प यू कंपेयर क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स एंड मॉर्गेजेस टू। करना कुछ नहीं है, बस आपको विजिट करना है creditmarket.ae, या फिर आप कॉल कर सकते हो 800 Alfred पर। कमिंग अप नेक्स्ट इज शीशा सॉन्ग। अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2।

0: Now lease a brand new SUV from Jetworth and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
1: Big 106.2. The Big Mix with Avni on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पे मैं हूँ अवनी आपके साथ. दिस इज द बिग मिक्स एंड इट्स ऑफिशियली ऑटम इन यूएई टुडे. लेकिन भूल चुका है यार कोई कि हमें ये टेम्परेचर पहले भी मिल चुका है. वेल क्यों बोला जा रहा है कि आज से ऑटम शुरू हो गई है. दैट इज एक्चुअली द ऑटमनल इक्विनॉक्स. इसका मतलब ये नहीं है कि आज से आपको एकदम अपसाइड डाउन वेदर देखने को मिल जाएगा. इट्स बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर. ये इंस्टेंट वेदर स्विच नहीं है. ह्यूमिडिटी फॉग मिस्ट जो है हल्की सी कम हो चुकी है. टेम्परेचर 37 तक जा चुका है. दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. लेकिन उसके बावजूद यार ये इक्विनॉक्स आ तो गया है लेकिन शायद थर्मामीटर को समझ नहीं लगा है ना. बता नहीं पा रहा है वो. गलती तो ये हुई यार कि आज के बाद हमें लगा था कि एकदम जेन्युइन वेदर स्विच हो जाएगा जो हो नहीं पाया. 19-20 का फर्क कल और आज में इतना ही लग रहा है. वेल सितंबर एंड तक वन मोर वीक टू गो. फिर शायद हमें मेजरली कोई चेंज दिखे. अंटिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2.

0: The Big Mix with Avni on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Big 106.2 में मैं हूँ अवनी आपके साथ, जिसका फिलहाल हो रहे जाने का टाइम, पर आपको पता है ना, मैं हमेशा रहती हूँ इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन. ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ फॉलो ऑन 106.2 बिग एफएम इंस्टा हैंडल. आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो अवनी यार के पेज पर, AVNIY AAA. अंटिल देन कल मिलती हूँ यार 1 to 5 अगेन ऑन द बिग मिक्स. टिल देन कीप इट लॉक्ड टू बिग 106.2. वो तो है यार. द सॉन्ग वखरा स्वैग कमिंग अप योर वे आफ्टर दिस ट्रैक.

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:07। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: have the perfect holiday? Tell me what you want. Your expert travel agent will curate it around you. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Hanji, this is the Big Thrill, Mansi, right here on Big Water 6.2, the beat of Bollywood. Officially, garmiyon ka the end ho gaya. Feel nahi ho raha hai, but ho gaya, ho gaya, ho jayega. I think acha mausam aur acche din saath hi aayenge. Filhal, while you're heading home, jab aap traffic jam mein phaste hain, hum yahan pe jam karte hain. As every desi loves to eat and loves to sing, giving you a platform to showcase your talent here with your madhur or not so madhur awaaz.
1: Karaoke.
2: आज शाम का गाना अगेन अ वेरी पॉपुलर वन फ्रॉम द 90s. आई थिंक वी हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू. दो फिल्में इनकी मैंने देखी हैं एंड दोनों के गाने बहुत अच्छे थे. दिस इज आई गेस वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज जो टेलीविजन पे रिलीज हुई थी, थिएटर्स में नहीं.

0: ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों को कहां पहुंचने की जल्दी होती है. व्हेन यू आर ऑन द रोड, पता नहीं किस आफत में रहते हैं लोग आजकल.
1: द बिग थ्रिल विद मानसी ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: See, I understand, अगर आपका अलार्म टाइम पे नहीं सुबह बजा तो आप ऑफिस जाने में लेट हो रहे हो, ऑल ऑफ दैट रश आई स्टिल अंडरस्टैंड. रात को 9:30 बजे तुम्हें कहाँ पहुंचने की जल्दी है. कल एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही हुआ मेरे साथ. आई वाज ड्राइविंग एंड ऑफकोर्स मैं अभी तक बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन ड्राइवर हूँ. मेरे इंस्ट्रक्टर ने, स्कूल ने जो सिखाया था मैं फॉलो करती हूँ. मैं राइट लेन में थी, पता नहीं किस बात की उस बंदे को जल्दी थी एंड वो ऐसे कट मार के निकला है. फिर हम दोनों एक ही सिग्नल पे साथ आजू बाजू खड़े मिले. मेरा बड़ा दिल था कि मैं अपने विंडोज डाउन करूं और बोलूं, कर ली जल्दी, पहुंच गए साथ में खड़े सिग्नल में. आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रश, कहां पहुंचना है. आपको पता है सिग्नल पे अटकना ही है तो आराम से चलो. मैं बहुत आराम आराम से रहती हूँ, मतलब आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस. आई थिंक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली कहानी मेरे साथ है. फिलहाल इस वक्त अगर आप ट्रैफिक में अटके हुए हैं, वी हैव गॉट द बेस्ट वे टू एंटरटेन यू एंड दैट इज कैराओके. बट आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि अभी तक जितने भी लोगों ने कॉल किया है गलत जवाब क्यों दिया है. 90s का गाना है, 2000s का नहीं. फॉर ऑल दोज हु आर सेइंग अगर तुम मिल जाओ, बिल्कुल गलत जवाब है. Somehow, now I realize it sounds like agar tum mil jao.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening, यह Big Thrill Mansi. We are karaokeing and आ गए हैं Sovik. Hi Sovik.
2: Hi Mansi.
1: मैंने ये बात कितनी सही बोली ना, लोग पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं.
2: एकदम सही बात बोला.
1: कल मुझे ऐसे कट मार के गया कोई बंदा और सिग्नल पे हम दोनों एकदम साथ खड़े हुए थे. मेरा इतना मन था कि मैं जरा अपना विंडोज डाउन करूं, बोलूं भाई पहुंच गए हो.
2: एग्जैक्टली. और ये जाने के टाइम और आने के टाइम ही ऑफिस में हम लोगों को यही मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं.
1: यार आप तो फिर भी ऑफिस के आने जाने वाले टाइम की बात कर रहे हो, मैं रात के 9:30 बजे की बात कर रही हूँ. कहाँ पहुँचना है, मतलब क्या आफत थी मुझे समझ नहीं आया.
2: वेरी ट्रू.
1: मुझे ऐसा लगता है कि नए ड्राइवर्स आर बेटर देन पुराने ड्राइवर्स. व्हाट डू यू थिंक?
2: Completely agree.
1: Thank you so much.
2: That's great, Mansi.
1: है? Sorry, gave up. करे, you are great, Mansi. कैसा रहा आपका दिन?
2: All good. Returning to home.
1: How's the traffic looking like?
2: As usual, pathetic.
1: आई हाय, कोई बात नहीं. जब हम ट्रैफिक में अटकते हैं, हम यहाँ पे एंटरटेन करते हैं. तो सॉविक, आपने गाना पहचान लिया? मुझे लग रहा है कि सॉविक जो है काफी सुर में गाएंगे. Alright, सॉविक. हाँ जी.
2: तेरे दर पल सनम चले आए, तेरे दर पल सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए.
1: हाय, सो क्यूट. व्हेन वाज़ द लास्ट टाइम यू सैंग अ सॉन्ग फॉर अ गर्ल?
2: आई सैंग यस्टरडे ओनली फॉर माय वाइफ. आई एम नॉट अ सिंगर बट यस, जितना हो सके करता.
1: ये तो प्लेटफॉर्म ही सर नॉन सिंगर्स के लिए, बट आपने लगा लिए थे, एक दो सुर लग गए थे. नॉट बैड. जब डेट कर रहे थे तो कौन सा गाना सुनते थे? शर्मा.
2: ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज 90s के कुमार सानू, सोनू निगम, हीज आर द एवरग्रीन.
1: अरे एक आधा तो होगा.
2: या अभी तो दिमाग अभी तो नहीं आ रहा.
1: कितने साल हो गए आपकी शादी को?
2: इट्स बीन नाउ 9 years.
1: हाँ, फिर तो ठीक है. भूलना, याददाश्त का कमजोर होना आफ्टर 9 years बनता है. बस ये मत भूल जाना कि शादीशुदा हो, बाकी सब चलेगा. थैंक यू सॉविक, बड़ा मजा आया आपसे बात करके. यू हैव अ ग्रेट इवनिंग.
2: सेम हियर.
1: बाय बाय. यही है कैरियोकी. डजंट मैटर अगर आपको गाना आता है नहीं आता है, दिस इज हाउ वी एंटरटेन आवरसेल्व्स. हम माहौल बनाते हैं, रिलैक्स करते हैं. अगर आप भी गाना चाहते हैं, 800-1062 इज द नंबर टू डायल.
3: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है. सुनो. नाम या दाम? नाम
4: मनी फॉलोज माय ब्रदर.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, yeah, Big Thrill and Mansi. This is sort of the show. We play this fun game. It's called the 5-second rule. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको देती हूँ कुछ कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. पता है मुझे गाड़ी में फिलहाल लग रहा है क्या लड्डू गेम है, बट जलेबी सा है. अगर आपने खेलना है एंड यू थिंक क्या आप 5 सेकंड में जवाब दे पाएंगे, 800-1062 इज द नंबर टू डायल. A while ago, we spoke about this new trend between couples called the food divorce, जिसमें किचन्स अलग अलग है, खाना खाने का टाइम अलग अलग है, ग्रोसरी शॉपिंग अलग अलग है, मतलब जिसे जो खाना है वो अपना खाना खुद बनाएगा एंड ऑर्डर करेगा. नाउ एक और ट्रेंड, द स्लीप डिवोर्स ट्रेंड. अब ये है क्या, आपको बताती हूँ इन जस्ट अ बिट. किक स्टार्टिंग दिस आवर विद

0: Flights, hotels, transfers, visas, leave it to me. Everything your holiday needs, sorted. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.
2: आई थॉट अगर आपको याद नहीं है तो याद दिला दूं, आपकी एनुअल लीव इस साल आपने अभी तक यूज नहीं की है. आई थिंक टाइम आने वाला है बिकॉज वी आर टेकिंग यू टू जर्मनी. इट्स टाइम टू चेक इन. इमेजिन जर्मनी की सर्दी, आए हाय हाय मजा आ जाना है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज एन ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप टू फ्लाई विद टीम बिग. वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू सेंड अस वन व्हाट्सएप, वो भी फ्री है. बिग चेक इन, अपना नाम 0543091062 पर रजिस्टर करने के लिए. अगर यहां नंबर नहीं लगता है, हेड टू आवर इंस्टाग्राम पेज, वहां भी आपके पास मौका है टू फ्लाई विद अस 106.2 बिग एफएम इट इज. एंड मैं अभी पढ़ रही थी कि जर्मनी के हाईवेज में गाड़ी चलाना हर ड्राइवर का सपना होता है, और मैं तो न्यू ड्राइवर हूं, मैं तो अपना लाइसेंस इंटरनेशनल करा के जाऊंगी. अगर आप भी फ्लाई करोगे तो करवा लेना, मतलब आई थिंक इट्स अ ड्रीम टू एक्चुअली ड्राइव ऑन अ हाईवे व्हिच इज कॉल्ड द ऑटोबान विदाउट एनी स्पीड लिमिट. इनफैक्ट इट इज इलीगल टू run out of fuel on the autobahn, and stopping on the highway for any reason aapko fine bhi lag sakta hai because it is a safety hazard. Ab koi speed limit hai nahi, but धूम मचाने वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे. बट ये सब फील करने के लिए रजिस्टर करना बहुत जरूरी है. वंस अगेन रिपीटिंग द व्हाट्सएप नंबर, बिग चेक इन, योर नेम 0543091062 पर.
1: Participate in the Big Check-In Contest and get a chance to win a trip to Germany with Team Big. Presenting sponsor, Danube Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf DG. Ethnic partner, Bowery and Kora. Travel partner, AFC Holidays. Exclusively on Big 106.2.

0: Good evening. This is The Big Thrill.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: And we're playing the 5-second rule. Filhal, phone lines par Shekhar. Hi Shekhar, kahan atke ho? Ghar pahunch gaye ho?
2: Main abhi to Sharja mein idhar Nada atka hu.
0: Nada atke jana kahan hai aapne?
2: Sharja.
0: Khair itna dur nahi hai Nada se Sharja, but traffic kaafi zyada slow moving hai aaj.
2: Bahut zyada traffic, accidents ho rahe
0: hain. Ab kya kare logo, ghar jane ki aajkal itni jaldi padi rehti hai. Hai koi aisa ghar mein jo aapka intezar karti hai ki suno aa gaye?
2: दो सगाई हुई वो भी टूट गई
0: यार शेखर, आपके हाल तो मुझसे भी बुरे हैं यार। जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि आप और मैं अपने दर्द पर हंसने लगते हैं, इन्होंने इतने कैजुअली बोल दिया है दो सगाई थी वो भी टूट गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और दो चार का स्कोप है अभी फिलहाल शेखर।
2: तीसरी की तैयारी करें,
0: तीसरी अगर चल जाए तो मुझे फोन कर देना। मेरा गला इतना खराब है कि मैं हंस भी नहीं पा रही हूँ, बट एनीवेज वी विल प्ले द 5-second rule. इट्स अ फन गेम। आपको मिलेंगे 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, तीन चीजें बतानी है 5 सेकंड के अंदर। आर यू रेडी? अब आपकी 2-3 सगाइयां टूट चुकी हैं, तो 3 शादी वाले गाने मुझे बताइए।
2: मुझे शादी करोगी, दिन सगुना का चढ़िया, और
0: दिन सगुना का चढ़िया, ये तो नहीं सुनाया था लड़कियों को जिन्होंने सगाइयां तोड़ी हैं? गाना मत गाना अगली बार, पूछे ना कि आपका।
2: मैं तो अभी थोड़े से पहले इसमें कहीं चल रहा था, सुना था।
0: नहीं नहीं, पर मैं कह रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, कभी गाना मत गाना अगली बार जब सगाई करो, ठीक है? अच्छा क्विकली टेल मी, 3 पिज्जा टॉपिंग्स। नहीं खाते पिज्जा, पिज्जा का शौक नहीं है?
2: नहीं।
0: अच्छा चलो, मूवीज देखने का शौक तो होगा, तो 3 सलमान खान की मूवीज। इनकी गाड़ी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी में अटकी हुई है। आगे बढ़ो, शादी से आगे भी जिंदगी है यार, हर चीज के जवाब में मुझसे शादी करोगी। अच्छा 3 ब्रेकअप के गाने बता दो।
2: एक तो ब्रेकअप सॉन्ग है।
0: शेखर एक बात मुझे बताओ, 3 ऐसी क्वालिटीज जो आप अपनी होने वाली बीवी में ढूंढ रहे हैं।
2: वो अच्छी होनी चाहिए और घर वालों को ख्याल रखना चाहिए।
0: मैं कह रही हूँ एक ही क्वालिटी ढूंढो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है, लड़की होनी चाहिए, बाकी आगे का आपको याद होगा।
2: और जिंदा होनी चाहिए।
0: शेखर इतना खराब खेला ना, इतना खराब खेला है कि मतलब मेरा गला उतना खराब नहीं है जितना खराब आपने खेला है, बट मजा आया बड़ा आपसे बात करके। एंड मजाक एक तरफ, आई रियली होप अगर आप शादी करना चाहते हैं तो फटाफट आपकी शादी हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बाय शेखर। ये 5-second rule आपने खेलना है, तो एक ही रूल है, मुझे कॉल करना है 800-1062 पर।

0: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
1: नहीं, ये तो मुफ्त है।
0: गुड, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
2: दिस इज मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: किसी दिन या तो मैं फंसूंगी या मैं किसी को फंसा दूंगी। अभी कामरान का कॉल आया, उन्होंने हेलो बोला, मुझे हेलो लव सुनाई दिया। कामरान बेचारे घबरा गए, कहते नो नो यू आर माय सिस्टर, यू आर लाइक माय सिस्टर। हाय ब्रदर, हाउ आर यू?
2: आई एम गुड, एवरीथिंग्स फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, एवरीथिंग गुड।
1: गुड, ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा। फिलहाल कामरान, आपकी शादी होगी है?
2: यस, पास्ट 7 इयर्स।
1: वेरी नाइस। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ न्यू ट्रेंड बिटवीन कपल्स Which is called the sleep divorce. अब sleep divorce ये है कि husband wife अलग अलग कमरे में सोते हैं because of certain issues के दोनों में से कोई एक snore करता है, किसी को AC 24 पे चाहिए, किसी को 18 पे चाहिए, किसी को जो है light on करके सोना है, किसी को एकदम dark room चाहिए। तो आपका क्या opinion है about this trend?
2: मेरी वाइफ यहाँ पे होती है, सेम ऐसे ही है, मुझे लाइट में प्रॉब्लम है, मुझे लाइट में नींद नहीं आता, उनको लाइट में सोना है। सो शादी का मतलब ही है कंप्रोमाइज और बैलेंस। अगर एक आदमी थोड़ा मतलब गुस्से में है, दूसरे को अंडरस्टैंड करना
1: चाहिए। फिर आप लाइट जला के सोने लगे उनके प्यार में?
2: ऐसा वैसा लाइट जला के उनको एसी, मैं गर्मी भी लगती है, फैन है, एसी बंद करना है, ओके स्विच ऑफ।
1: हाउ स्वीट, सोएंगे हम एक ही कमरे में, बट एज अ हस्बैंड मैं एडजस्ट करूंगा, व्हिच इज ब्रिलियंट। बट आई थिंक ये बहुत अच्छा ट्रेंड है जिन कपल्स में लड़ाई होती है रिगार्डिंग द रूम टेम्परेचर, रिगार्डिंग प्रॉब्ली स्नोरिंग। आई थिंक एक अन इंटरप्टेड पूरी रात की नींद आपकी शादी को सुखी रख सकती है, ये मेरा मानना है।
2: नींद आने का मतलब यह है कि इंसान टायर्ड है, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड है, धूप है, छाव है, इफ यू वॉन्ट टू रिलैक्स आपको कहीं पे भी नींद आ जाएगी। बस मेंटली आपको ठंडा होना चाहिए, बाकी सब चीज चलती है।
1: या मेंटली ठंडा होना चाहो सर और सामने वाला कराटे ले रहा हो तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा सीन, है ना? यू नो, मुझे शादी की किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, सिर्फ इसी चीज से लगता है कि यार अगर बंदा हिले बहुत, बंदा कराटे ले ले तो मुझे मेरी नींद दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है।
2: फिर सिंपल है वो, आप फ्री स्पिरिट होके शादी मत करो।
1: मैं तो वही हूँ ना, मैं फ्री स्पिरिट में ही हूँ क्योंकि आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन अ पार्टनर बट नॉट ऑन माई स्लीप। फिलहाल वी प्ले दिस फन गेम विद यू, इट्स कॉल्ड द 5 second rule. You get 5 seconds. I'm going to give you a few categories. Try to करो ना सर, अब आपने शादी कर लिया, hardest job कर लिया दुनिया का।
2: 5 second rule.
1: Three things that are black in color. अरे अरे, बाल, shirt, कुछ भी हो सकता है। हो गया, time खत्म हो गया। 3 गाने जिनमें दिल आता है।
2: हम दिल दे चुके सलम तुम दिल की धड़कन में।
1: अरे अरे अरे, टाइम भी खत्म हो गया। 3 नाम विद द लेटर एम।
2: मोनिका मनीषा।
1: ये देखो यहाँ आपने कर दी है रेड फ्लैग वाली बात, एक भी लड़के का नाम नहीं लिया आपने, मोनिका मनीषा कर रहे हो, डिसअपॉइंट हो गए मैं यहाँ पे। सारी सिस्टर है आपकी यार, आप बड़े क्यूट हो। 3 अक्षय कुमार की मूवीज।
2: खिलाड़ी, बापू लोहार और
1: क्या बापू लोहार,
2: वो एक मूवी थी उनकी लंबे बालों वाली, वो
1: रब्बा
2: बाबू लोहार, उसका
1: बाबू लोहार, मुझे नहीं याद है ये मूवी। 3 ऐसी हैबिट्स आपके मैनेजर की, आपके बॉस की, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: बार बार फोन करना, हर चीज के लिए आर्गुमेंट करना।
1: बहुत बढ़िया,
2: बस दो ही है,
1: बाकी ठीक ठाक है बंदा, तंग नहीं करता ना ज्यादा।
2: ठीक है बाकी
1: घर जाके नजर उतरवाना। जिनका बॉस उनके साथ ना बैठे ना, वो दुनिया के सबसे खुश नसीब लोगों में से होते हैं। खेला आपने बहुत खराब, बट मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच कामरान, हैव अ ग्रेट इवनिंग।
2: Same here. Thank you. Nice to talk to you.
1: Same here. Bye. Yeah, 5 second rule. I said it sounds easy, but easy is not. Play 800-1062 is the number to dial.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, this is The Big Thrill. And of course, in the next 10 minutes, koi bahut happily surprise hone wala hai. It's time to check in. We're taking you to Germany and I will run the randomizer in the next 10 minutes. Agar aap bhi fly karna chahte ho with Team Big, अगर अभी तक WhatsApp नहीं किया है टू रजिस्टर, डू इट राइट नाउ. आपके पास शॉर्टलिस्ट होने का मौका है. विक चेक इन योर फुल नेम टू 0543091062. इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपने WhatsApp किया हुआ है, फोन को अपने पास रखें, खुद को नेटवर्क में रखें, क्योंकि ये कॉल अगर मिस हो गया ना तो बहुत रिग्रेट होने वाली है. सो यस, इट्स टाइम टू चेक इन. वी फ्लाइंग यू टू जर्मनी इन जस्ट अ बिट.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 7:09।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: हो जाएंगे।

0: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूस, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Still stuck in your old car? It's time to upgrade the way you drive. Get your hands on the brand new 2027 models from Jetto T2, T1 and dashing range of SUVs. Now available on a 12-month lease from selfdrive.ae. Also, don't forget to check out our offers on Skoda Kodiaq, 4 exciting SUVs. With prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan, visit selfdrive.ae. TNC apply.
3: This Navratri, experience the festive souk exhibition on 26 September from 10 a.m. to 10 p.m. at Almas Conference Center, right next to DMCC Metro Station. Shop from 45 plus exhibitors featuring festive fashion, jewelry, home decor and more. Kids activities, exciting competitions, the UAE's Got Talent Season 8 Grand Finale, plus chances to win staycations and dinner vouchers. Entry and parking free. Brought to you by Kids R Us. With Divalicious Beauty Saloon, jewelry partner Biani Jewels. Event made large by Big 106.2.
4: New term, new Jetour. Drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMIs starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Alain and Fujairah today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
5: The Big Mix, miss kiya gaya?
6: कर ही नहीं सकते, चाहो भी तो नहीं कर सकते।
7: हाय अखिल।
8: हाय।
7: मतलब लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी साइड पर है, आप जर्मनी चल सकते हो हमारे साथ।
8: Maybe, yeah.
7: So what popular German sweet treat is a soft fried dough pastry, which is very similar to a jelly donut? Option A, Berliner. B, yeah. Churros. C, a macaroon.
8: First one.
7: ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इट्स द बर्लिनर। लेकिन आपने कभी खाया है ये?
8: नहीं खाया, मेरे को खाने के अभी वहाँ पे जाके
7: नाम लेते ही जो क्रेविंग शुरू होती है खाने की कि अभी खिला दो। आपकी फेवरेट स्वीट डिश क्या है वैसे?
8: नॉर्मली आई लाइक आइसक्रीम्स, यूजुअली आई लाइक द गुलाब जामुन।
7: गुलाब जामुन प्लस आइसक्रीम का कॉम्बो कभी ट्राई किया है?
8: ट्राई किया था।
7: अच्छा बात है ना, इसे जर्मनी में जाके ये सब ट्राई करना, फिर पता लगता है कि हम घूमने आए हैं। Congratulations, Akhil, आपका नाम रजिस्टर हो चुका है टू बिग चेक इन टू जर्मनी।
5: Cheer your midday mood, Monday to Friday, 1 to 5 p.m. The Big Mix with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
7: हाय, स्टिल स्लो मूविंग ट्रैफिक है। अगर आप शेख जायद पे हैं, 48 मिनट का डिले है, मतलब आज तो घर डायरेक्ट डिनर टाइम पे ही एंट्री होगी। फिलहाल हैवी ट्रैफिक एट द मोमेंट इफ यू आर अराउंड द रीफ मॉल, ग्रेयर सेंटर के पास, डेरा से अगर आप आगे जा रहे हैं काफी स्लो मूविंग है। अगेन फहीदी के पास इट इज बम्पर टू बम्पर, काइंड ऑफ स्टैंड स्टिल नियर रफा एज वेल, अ बिट पैची, नॉट रियली बैड। 12 से 18 मिनट का डिले अगर आप जुमेरा रोड पे हैं गोइंग टुवर्ड्स उम सुकीम, एंड देयर इज हेवी ट्रैफिक इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दुबई हिल्स मॉल एंड फर्दर टुवर्ड्स फुरजान भी आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू रिपोर्ट मुझे बता सकते हैं 800-1062 पर।
2: Now lease a brand new SUV from Jetour and Skoda. Prices starting from 1,999 dirhams per month for a 12-month plan. Visit selfdrive.ae. TNC apply.
5: Big 106.2.
6: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
9: नहीं, ये तो मुफ्त है।
6: Good. क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास। चलो फोन लगाओ।
5: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Good evening. Yeah, है Big Thrill. मैं हूँ Mansi. It's the 23rd of September 2026. Time to actually go back in time. I'm taking you to 23rd September 1994. 90s की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स में से एक आज ही के दिन रिलीज हुई थी. डायरेक्ट करा था समीर मलकान ने इस मूवी को एंड मैसिव बॉक्स ऑफिस हिट थी ये. ओवर द टाइम द जोड़ी ऑल्सो जो इस मूवी के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी बिकेम अ सुपरहिट जोड़ी. एंड रिसेंटली इनफैक्ट लास्ट वीक आफ्टर अ डेकेड बोथ ऑफ दी स्टार्स दे रीयूनाइटेड प्रियदर्शन की एक मूवी के लिए. अब प्लॉट कुछ ऐसा था कि एक टफ नो नॉनसेंस पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम जो है वो मैं आपको बता नहीं सकती, वो नाम समझ जाओगे, वॉज फोर्स्ड टू लेट अ बोर्ड बॉलीवुड सुपरस्टार शैडो हिम टू रिसर्च फॉर अ मूवी रोल. एंड इस मूवी में ऑफकोर्स दो ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस भी थी. द मूवी इज एक्चुअली इवन टूडे वेरी वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द चैट बस्टर गाना जो इस मूवी में था विद वन ऑफ द लीड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हु वर डेटिंग देन. एंड बाद में वो ब्रेकअप कुछ खास अच्छा नहीं हुआ था इन पब्लिक. इनफैक्ट डेविड धवन हु इज नॉट द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी वॉज involved in the making of the movie. That is why the movie has a brilliant, brilliant comic timing. अगर आपको याद आ रहा है ये movie कौन सी है, इस movie के बाद जो मैं कह रही हूँ lead actors इन्होंने ये दिल लगी, तू चोर मैं सिपाही, कीमत जैसी movies भी की, but this remains one of the biggest hits. याद आ गया है तो 800-1062 is the number to dial. Let me see कितनों को 90s की ये movie आज शाम याद है.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: Hey,

0: When she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
1: Good evening, Big Thrill, Mansi. The weekend is almost here. If you've not made any plans, we'll make some. Filhal, we're talking about this movie jo aaj ke din in 1994 release hui thi. Unofficial remake thi, Bollywood वर्जन बना था, हॉलीवुड वर्जन ऑफकोर्स इस मूवी का इतना हिट नहीं हुआ था जितना बॉलीवुडाइज्ड वर्जन हो गया था. द हार्ड वे, दैट वॉज द इंग्लिश, द ओजी मूवी. एंड ऑफकोर्स द लीड एक्टर्स बिकेम अ सुपरहिट पेयर. एंड एक गाना इस मूवी का आज भी इतना आइकॉनिक है, मॉरिशस में शूट हुआ था. सरोज खान ने जो है आइकॉनिक डांस स्टेप्स ऑन द स्पॉट बनाए थे. एंड आज भी लोग आई थिंक एवरी नाउ एंड देन इस गाने की रिक्वेस्ट करते हैं. एंड आई एम सो ग्लैड कि एक बार ये गाना रिक्रिएट हुआ था, बट ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ. बट इस मूवी का जो टाइटल है उस का गाना, जो सेम नेम का गाना रिक्रिएट हो चुका है. एंड इट्स अ बैंगर फीचरिंग इमरान हाशमी एंड अक्षय कुमार. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस मूवी फ्रॉम द 90s. इफ यू डू, 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parks dealer in the Middle East.
3: 34 डिग्रीज है, लो जाएगा अराउंड 31. काफी ह्यूमिड माहौल बाहर, 71% पर है ह्यूमिडिटी.
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Asia? Somewhere exotic? I've found unbeatable deals around the world. Visit holidaymarket.ae or call 800-ALFRED.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, this is the Big Thrill of Mansi. And चाहे यहाँ आके एक महीना हुआ हो, एक साल, दस साल, हम सबका सपना होता है टू इन्वेस्ट हियर इन दुबई रियल एस्टेट, राइट? बिकॉज द रिटर्न्स आर फैंटास्टिक एंड नाउ इज द टाइम. सो इफ यू लुकिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई रियल एस्टेट, दिस वन इज फॉर यू. एएक्स प्रीमियम प्रॉपर्टीज आपके लिए लेकर आए हैं दुबई प्रॉपर्टी उत्सव. 26 major developers, one destination, and all of this is happening on the 26th of September at the JW Marriott Hotel in Marina. And best part ye hai, up to 40% off milega, DLD waivers hai, 2-year investor visa, payment plans, and all of this plans, and of course the properties starting from most of them. 1,999 dirhams a month. Free mortgage consultation भी आपको मिलेगा, plus up to 3-year post handover plans. बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, and you will be spoiled for choice. They also have gold vouchers up to 50 grams के up for grabs. So make sure that you set in reminders, mark your calendars. One day endless opportunities. Register now. Dubai Property Utsav 26th of September को at the JW Marriott Hotel in Marina. TNCs do apply. फिलहाल यहाँ पर I was talking about this movie जो आज के दिन 1994 में रिलीज हुई थी, एंड बहुत सारे गलत जवाब आए. सही जवाब है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, एंड आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, राजेश्वरी लुम्बा भी इस मूवी में थी. फिलहाल ओरिजिनल गाना ऑफ कोर्स आई लव, बट आई थिंक अगर मैं एक लिस्ट बनाऊं ऑफ रिक्रिएटेड 90s के गाने जो मुझे अच्छे लगते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्हें रिक्रिएट करा, आई थिंक दिस definitely should be a part of the list.

0: মাঝখানে মধু হোস কিয়ে যায় মুঝে তো
1: Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, brought to you by insurancemarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247. Listen to her every day.
2: Mogembo! खुश हुआ
3: जतिन जर्मनी की मैं बात करूं इट्स अ प्लेस व्हिच इज नोन फॉर हाईवेज फॉर सम ग्रेट कार्स एंड ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज वेरी पॉपुलर एट द ऑक्टोबर फेस्ट तो इन तीनों में से आपका मोटिव क्या है जर्मनी जाके आप ज्यादा क्या करना चाहते हैं
4: एक्चुअली मेरा मोटिव तो अक्टूबर फेस्ट एंजॉय करना
3: है। मैं समझ ही गई थी आप हो देवदास हमको किसी के गम ने मारा आपको संभाल के रखना पड़ेगा अगर आप हमारे साथ ट्रैवल करते हो तो कहीं गुम ना हो जाओ बहुत बढ़िया गिविंग यू चांस शॉर्टलिस्ट होने का आई विल सी आपकी जीके जर्मन नॉलेज कैसी है विच मैसिव गॉथिक कैथेड्रल टुक ओवर 600 इयर्स टू कंप्लीट एंड इज वन ऑफ जर्मनीज मोस्ट विजिटेड अट्रैक्शंस और साइट्स ऑप्शन है The Cologne Cathedral या फिर option B Notre Dame, option C St. Peter's Basilica. जवाब पर वो 100% करेक्ट नहीं होता
4: है
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood. The Big Chill, where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही, यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: No rush, no noise, just soul-soothing music on a moonlit ride. This is The Big Chill on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जितना भी ट्राई करोगी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही।
2: बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि होमवर्क भी मेरा, रिसर्च भी मेरी, बट प्लान होगा आपका। फ्रॉम कैफेज टू स्ट्रीट फूड, बजट फाइंड्स टू वायरल स्पॉट्स, ट्यून इनटू द बिग रेकमेंड्स एवरी संडे। क्योंकि अगर अवनी ने बेस्ट कह दिया तो बस कह दिया।
0: Catch the big recommends every Sunday from 3 to 6 p.m. with Avni. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Love, lo-fi and night feels. Your soundtracks to unwind. Only on the big chill. On Big 106.2. The beat of Bollywood.